देवादिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीषा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: हे वेयर द एयर इज गोइंग, एयर इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू। यू कैन पुट इन नियर महाप्रभु जी हियर मे बी यू हियर। ओह महाप्रभु जी देयर for you, very good. Okay. Yeah.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शुभ रात्रि।
1: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवन जी महाराज की जय। परम स्वामी महाश्वरान जी गुरुदेव की जय।

हिमालयांसि देवतार श्री श्याल गुरुजी महादेव की जय। देवादि देव श्री देव पुरुष महादेव की जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री अलकापुरीश महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद चिस्त गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंदेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।